जीवन का मनोरथ गुरबाणी ने बयान किया है, मैं तुहाडे सामने थोड़ा समा बाद बयान करांगा। जीवन का मनोरथ की है, जिस मनुख नूं जीवन पाके जीवन का प्रयोजन जीवन का लक्ष्य समझ विच आ गया है, समझ लो कि उन्हें जीवन के अंदर कुछ पा लिया है। खिमा चाहवांगा बहुतियां दा जीवन लक्ष्य की समझ तो बगैर ही बीत जाता है, पूरा जीवन बीत जाता, उन्होंने जीवन के लक्ष्य की समझ नहीं आती। तुहाडे ते कोई प्रश्न करे भी सवेर तो शाम तक चलदे हुए नजर पैंदे हो, दौड़दे हुए नजर पैंदे हो, सारा दिन दुकान ते ऑफिस दे अंदर सज्जे खब्बे कदी वेले मिलदे ही नहीं, कारण आखोगे लक्ष्य। ते फिर सवाल पैदा हुंदा है लक्ष्य की, कम कर रहे हो सारा दिन कमर तोड़ के लक तोड़ के कम करदे हो, एदा मनोरथ की है? आप कहोगे पैसा, और है भी पैसा, एदा मनोरथ पैसा है। एदा मतलब कम करना ते कम दा मनोरथ पता होना, इन्हां दोवां चीजां दा मनुख दे कोल ज्ञान है। मैं कम तां करना है मैनूं धन मिले, धन मिलेगा मेरा परिवार चलेगा, मेरा अपना पेट ते जीवन चलेगा, धन कमाउणा मेरा लक्ष्य, कम करांगा तां मिलेगा। एक बच्चा स्कूल दे अंदर जा रहा है, उहदे ते प्रश्न करो भी तेरा लक्ष्य की है, मनोरथ की है? वो कहेगा मेरा मनोरथ है, मेरी मंजिल है, मैं डॉक्टर बनना है, मैं साइंटिस्ट बनना है, मैं टीचर बनना है। तां ही स्कूल दे अंदर मगजमारी कर रहा किताबां दे नाल, वरना करन दा की लाभ है? अगर 20 साल दी मेहनत तो बाद कुछ रोजी रोटी दा वसीला बनना नहीं, अगर इस तरह का कोई दस्तूर बन जाए, अज ही सारिया स्कूलां नूं ताले लग जाणगे, किसी का भी दरवाजा खुला नहीं रहेगा। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इस तालीम दे अगले पासे कोई साडा मनोरथ है, ते मनोरथ दा सानूं पता है। तालीम तो बाद मेरा मनोरथ की है, मेहनत तो बाद मेरा मनोरथ की है। खिमा चाहवांगा गुरुद्वारे आ रहे हो, लक्ष्य दा पता है कि क्यों आ रहे हो? नहीं आउंदे घटदा की है, ते जे आउंदे हो ते तुहाडे विच वधदा की है? तुहानूं इस गल दी जानकारी होनी चाहीदी है। मैं आउंदा हां, मेरे जीवन विच वाधा की है? पिछले 20 साल तो लगातार आ रहा, मेरे जीवन दे अंदर वधिया की है? मैं नहीं आउंदा किसे दिन, ते मेरे जीवन दे अंदर घटदा की है? अगर ते इन गल्लां दी समझ है, फिर ते लक्ष्य दी समझ है। अगर इन्हां गल्लां दी समझ ही नहीं, तो फिर खिमा चाहवांगा आउणा ना आउण दे तुल है, ना आउण दे बराबर है, जिन्हों अपने जीवन दे लक्ष्य दा नहीं पता। तो हुण ए कहिए कि मेरे जीवन दा लक्ष्य है दो बच्चियां नूं जन्म देना, उस तो बाद उन्हां दी लालना पालना करनी, पढ़ाई लिखाई कराउणी, उस तो बाद बुढ़े होना मर जाना, जीवन दा लक्ष्य ए है। ए कम ते असीं तमाम पिछलियां जूनां दे अंदर करदे ही रहे हां। अपनी हैसियत दे मुताबक चिड़िया कां कबूतर दाना दुनका चुग के अपने बच्चियां दे पेट विच पाउंदे रहे ने। कां कबूतरां चिड़िया नूं वेखो चुंज विच दाना लैके बच्चियां दे चुंज विच पा देंदे ने, मुंह विच पा देंदे ने। असीं वी बच्चियां दे मुंह विच पा रहे हां, उहनां दे वी बच्चे ने, साडे वी बच्चे ने। इत्थे ते साडी उहनां दी बराबरता है। साडे जीवन दा लक्ष्य नहीं सी, जीवन दा लक्ष्य साडा कुछ होर है। चलो मैं एक दो बेनतियां होर भी करदा चला। जे कोई साडे उत्ते प्रश्न करे बई आ 36 किस्म दा भोजन, तरह तरह दा भोजन इह क्यों है, असीं कहांगे जीवन वास्ते। बड़े ध्यान नाल मेरी बेनती नूं समझण दी कृपा करियो। साडा जवाब आएगा जीवन वास्ते। जीवन है, भोजन दी लोड़ है। जीवन ही नहीं ते फिर भोजन दी लोड़ भी किथे है, अगर जीवन नहीं है। दूसरी बेनती, पानी कोक जूस तरह तरह दे तैयार किते, कोई प्रश्न करे भी क्यों? पहली गल ते प्रश्न करना ही मूर्ता है, क्योंकि साफ जा रहे के जीवन वास्ते, पानी जीवन वास्ते, कोक जीवन वास्ते, जूस जीवन वास्ते, तरह तरह दे ए तरल पदार्थ ते भोजन, ए सारा कुछ जीवन वास्ते। उस तो बाद जे कोई होर प्रश्न करे, मैं एक दो उदाहरण दे के जीवन दा लक्ष्य फिर बयान करना चाहना। जे कोई 20 लख 30 लख डालर ला के सुंदर बंगला मकान बना रहा हो, फिर कोई प्रश्न करे भी क्यों बना रहा है, ते ही कहांगे ना जीवन वास्ते।
ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅੱਧੇ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਬੰਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ।

नानक खुशी पी सच तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सुवारिया पूरी कोई करामात आप सृजन हार तारिया सिखी अत संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारा वारिया जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया

या धन सो तेरा थान है, सच तेरा पैश करया, नानक तू लहना तू है, गुर अमर तू विचारया, गुर डिठा ता मन साधारया, सो कहो तल गुर सेवी है, ऐनिस सहज सो पाए, दर्शन परसें गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए।

जियड़ा अग्न बराबर तपै पितर वगै काती परनवत नानक हुकम पछाड़ै सुख होवै दिन राती परनवत नानक हुकम पछाड़ै सुख होवै दिन राती।

है भी सच नानक होशी भी सच नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुर कौ बल बल जाइए आप मुक्त मोहि तारे ऐसे गुर कौ बल बल जाइए आप मुक्त मोहि तारे ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाव हो दिखम नदी जाए तरनी ना हों जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पया परणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरया परणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरया परम सम्मान योग चवर शतर दी मालक शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र

दया करो किछ मेर उपावह डूब दे पत्थर तारे जियड़ा अग्न बराबर तपै भीतर वगै काती परणवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती परणवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों आप जी रात्रि वेले दे दीवान दी हाजरी भर रहे हो। सतगुरु जी ने जो गुरु सिख ले नेम बनाया है उस बनाई हुई मर्यादा दे अनुसार आप जी ने सोदर रहराज साहब जी दा पाठ गुरु सवारिया तो सरवण किया है। हजूर के चरणा विच अरदास हुई वितर हुकम साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी खुरां दा उच्चारण किया होया आप जी ने सरवण किया है। तू काहे दुर्लह प्राणिया तुद राखेगा सृजनहार बड़े प्यारे ढंग नाल हजूर साडे अंदर नू टिका बख्श दे। आओ प्यारियो जिथे आपां हर बुधवार

बेचारा प्रभु मेरे का बड़ प्रताप जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए है मन की दुविधा बिनस जाहे परम पद लहिए बलिहारी गुर अपने द्योहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार करत ना लागी वार परम सम्मान योग चवर छत्र दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों अज किन्ने भागा वाले ओ शरीर ने जेड़े मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी दे अंदर ए जो ईसवी सन है इस दे 1998 दा ए साल इनू बस डेढ़ घंटे बाद पौने दो घंटिया बाद आपा अलविदा कर देना ते उस 1999 नू जी आया कहना जिस दा खास करके सिख जगत दे अंदर बड़ा चा ते उमा दो पक्ष ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी अंदर अज ओ भी लोक होणगे जेड़े नशे विच गुट होणगे जेड़े नच टप रहे होणगे पर कुर्बान मेरे गुरु नानक साहिब तेरे तो लोक इस वकारां दी अग विच सड़ रहे ने मेरे साहिब तू अपनिआं नू बांह दे के इस अग विचों बाहर कढ ले हजूर ने बाणी विच क्या अगन सागर बूढ़त संसारा नानक बहां पकड़ सतगुरु निस्तारा कुर्बान जाइयो उस गुरु तो जिन्ने सानू बाणी दित्ती जिसने कृपा करके सानू साध संगत दित्ती जिस गुरु जी ने कीर्तन दी दात दित्ती नाम दी दात दित्ती ते गुरु रामदास जी ने इसे समय नू तक के गल कही सी के गुरु कोल भी केवल ओ बह सकदा है जिदे अंदर सच्यार अंदर कोई सत दी कणी है जां जो गुरु नू इश करदा है ते उत्थे ताई हजूर ने कहा सी के कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले सच्यार सिख बैठे सतगुरु पास गुरु मेहरामत करे मैं अर्ज कर रहा अपने उस प्रसंग नू वैसे मैं अज कुछ लाना अगे तोरना जो पिछले कई दिनों तो इस स्टेज तो आपां गुरु कलगी वाले दा पुरब मना रहे गुरमुख प्यारे प्रबंधकां वल्लों हुक्म भी सी कि जदों गुरु गोबिंद सिंह जी दा पुरब आवे ते उस सरबंस दानी दियां रज के कथा कहानियां कीतियां जां खास करके मेरे बुजुर्ग बैणीवाल साहब उन्हां वल्लों ए मैं हुक्म कह सकना उन्हां तो छोटा वां आओ उस गुरु दियां भी आपां बातां अज करनियां ने जिथे अज 99 ਦਾ ਉਹ ਸਾਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ ਇਨਹੀਂ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਊ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਤਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰੰਕ ਲੜਾਊ ਸ਼ੇਰੋ ਕੇ ਸੰਗ ਭੇਡ ਪੜਾਊ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊ
तब है गोबिंद सिंह नाम कहा। ध्यान रखना ये आवाज अज तो 300 साल पहला आनंदपुर की धरती तो उठी ते उस आवाज नू कोई दबा नहीं सकिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा करन 99 आपा तक ने पाया इन जी आया कह रहे हैं, पर प्यारियो ये 300 साल तक ने 400 साल शायद साडे विचो कोई तके ते आए साल जा ए समय ता ही सफल है जे किते गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा विच अज अरदास कर दिए कि मेरे दातिया तेरा ए 300 साल खालसे दा साजना पुरब आ रहा है, तू कर निरामत इन्हां सुक्या किरदियां विच अमृत दी झड़ी ला दे, तू विछड़िया नू मिला ले। ओही आनंदपुर दी धरती है जिथे कदी कुछ कागज ते लिख के चले गए सन बदावा दे के, पर अज कृपा कर कागज नहीं साडे तां मना उते बदावे लिखे हुए ने। शायद तू इन्हां मना नू धो दे, ए बदावे दी जड़ी काल के उतर जाए ते दातिया महा सिंह दी तरह गोद विच तू ही सानू लै के कह दे नहीं होए अखां विचो नीर ना छट महा सिंह तू मेरा ही है। गुरु बख्शिश करे प्यारियो जिथे आपां 99 दा साल आ रहा मैं कह के अगे तुरना वा, अज साडी जिंदगी दा एक साल घट भी गया है। जिथे नू जी आया कह रहे हैं ना, हजूर ने बाणी विच कह कहिंदे ने जदों मां दी गोद विच पुत्र हुंदा है मां लोरियां दिंदी है ते जदों उस बच्चे दा जन्म वाला दिन आउंदा है साल बाद ते असी रिश्तेदार साख संबंधी इकट्ठे करने आ ते कहने आ अज मेरा पुत्र इन्ने साल दा वड्डा हो गया है। पर भगत कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब विच कहिंदे ने नहीं मां ए ना क्या कर, जन्म वाले दिन तू कहनी है मेरा पुत्र वड्डा हो रहा है, कर कदी अपने सिर ते झाती मार, तू गोदी विच लै के लोरियां देनी है के जन्म दिन वाले दिहाड़े नू शांडल मनानी है, पर नहीं मां ए वड्डा नहीं हो रहा ए असल विच दिनों दिन घटदा पिया। असल विच साडी जिंदगी विचों भी एक साल अज घटिया नहीं, हजूर ने बाणी विच कहा जननी जानत सुत वड्डा होत है। पहली पंक्ति ए भगत कबीर साहब जी दी गुरु ग्रंथ साहब विच, जननी जानत सुत वड्डा होत है इतना कु ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है, मोर मोर कर मेरा मेरा कह के अदक अदक लाड धर, किन्ना प्यार करनी है पर पेकत ही जमराओ हसै, मौत क्यों वेख के हटदी है दिन वधदे नहीं पए दे घटदे पए। आपां याद रखिए कि अपना उस दिन नेड़े आउणा है। आओ साध संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता सरबंश दानी जिन्हां दे पवित्र इतिहास नूं कल भी आप संगतां नूं सांझा कीता सी, मेरे साहब दे वड्डे साहबजादे बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह शहीद हो गए ने। शाम दा वक्त है उधर सूरज छिपया है, उधर कलगी वाले दे छोटे साहबजादे बाबा जुझार सिंह जी ने शहादत दा जाम पीता है ते मेरे गुरदेव ने अज भी सोदर रह राज साहब दा पाठ कीता है। आओ हजूर किवें चमकौर विचों निकलदे ने, किन्ना किन्ना राह ते मेरा माही जांदा है ते की अपने उस अकाल पुरख नूं संबोधन करदा है। आप उस इतिहास नूं अपनी नजर सामने लियाईए ते सुरत नूं उस धरती ते लै जाओ जिहड़ी साडे तों सैकड़े को दूर है, पर ध्यान नाल कलगी वाले दी उस धरती दी शो सुरत राही उहदी खात नूं नमस्कार करिए। करो कृपा मैनूं असीस बख्शो, कोई भी रचना हजूर दी बख्शी फतेह तों वांझी ना रहे जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप जी दे दोनों साहबजादे शहीद हो गए ने ते भाई साहब भाई दया सिंह जी गुरा ने सोदर रह राज साहब जी दे पास तो बाद हजूर दे चरण पकड़ ले सन, सिख संगतां ने हजूर दे चरण गुरु के सिखां ने पकड़े ते एथी बेनतियां अरदासां कीतियां सन, मेरे दाता तुसी चमकौर दी गड़ी नूं छड दिओ। कल मैं इस विशेष बंदी अर्ज कर चुका, जदों हजूर निकलन लगे ने ते एक गल कही दया सिंह इकला नहीं मेरे नाल तुसी भी जाओगे, सिख इकट्ठे होए ने गुरमता कीता है, नाल निकलन लगे ने भाई साहब भाई दया सिंह जी प्यारे भाई धर्म सिंह जी ते तीजा जिहड़ा गुरु का सिख निकलिया ओहदा नाम है भाई साहब भाई मान सिंह जी।
ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣੀ ਏ

सतगुरु तेनू छड़ के नहीं ते सतगुरु ने बचन किया बुढ़िया जा मैं तेरे नाल अज बचन करना वा तेरे तो ओले कदे ना होसा मैं किसे भी रूह विच होवांगा पर तेनू पता होवेगा मैं किथे टिकिया होया वा। पंक्ति बड़ी रमज भरपूर है तेरे तो बुढ़िया ओले कदे ना होसा। बाबा बुढ़ा जी नमस्कार करके पिछा आ गए ते जिदन भाई लैणे नू गुरगद्दी दिती लैणे तो गुरु अंगद बने पहली नमस्कार गुरु नानक साहब ने कीती। उस वक्त माता सुलखनी भी कोल आई उन्हें एक शब्द कहा सी दाता लै गद्दी ता सेवक नू मिल गई पर पुत्रां दा की बनेगा इन्हां दा प्रसाद पानी ते गुरु साहब ने जेड़े बचन कह कवि संतोख सिंह ने गुरु प्रताप नानक प्रकाश भी दिते ने कह लगे सुलखनीए आ गुरु दा दर ऐसे ही एदे दर ते बैठे हुए कुत्तियां दे पैरां विच भी करामाता होणगियां ए ते मेरे पुत्र ने इन्हां दी क्यों नहीं लोग सुनगे। उत्थे इक शब्द क्या कहन लगे ए बाबे के होणगे बाबा श्री चंद ते लखमी दास ए बाबे के होणगे ते जोत जिहड़ी है गुरु अंगद साहब दे कोल होवेगी। उत्थे शब्द क्या गुरु घर के जे होए सुवाना जिहड़े गुरु दर दे कूकर होणगे तिनको पूजा सगल जहां।

ओहम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसिय सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसिय ध्यान लइय पौ मुकह गुर अमरदास परसिय अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जौ तौ रहै जा सुमंत्र मानवै लहै जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठै मिलै कन हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

परम सम्मान योग जुग हो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जिया ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी खुरां पासों सरवण कीतियां ने। कल दा दिन जो बतीत होया है, कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब सी ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नू आपां अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदो आपां इतिहास नू गुरमत नू पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलखण सानू जड़ी नजर आउंदी है, इत्थे गुरु दी किरपा ते निर्भर करदा है। 7 साल का बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल की उम्र विच बंदे नू सूझ कोई नहीं शब्द वरतदे ने ए सत्रिया बत्रिया गया। 12 साल गागर ढो के 72 साल का बजुर्ग भी सिख तो गुरु बन सकदा है। यही विलखणता है कि इत्थे 5 साल ते 3 महीने की बाल उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी वह भी गुरु बन सकते ने ते कृपा गुरु करे तो 72 साल का बजुर्ग भी गुरु बन सकता है। आओ गुरु अमरदास जी दे पावन पवित्र इतिहास की और बाणी की विचार आपने करनी है। जड़ा अज का दिन गुरगद्दी पुरब आप मना रहे हैं इस दी विचार इस दिन दे संबंध विच गुरु कृपा नाल आपां विचारने। कृपा करके जितने भी बैठे हो ना एकाग्रता जरूर बख्शिया जे। कोशिश करो इस खिंडे हुए मन नूं गुरु अमरदास जी दे चरणा विच अज टिका दईए। जे तां बुद्धि तारक केवल तर्क करन वाली नाल सुणांगे ते याद रखना वह कहा होया केवल तर्क की बिरती वाला लगेगा ते जदो प्रतख गुरु नू हाजर नाजर जान गुरु के बचन सरवण करांगे ते सतगुरु गुरु अमरदास की कृपा वरसेगी। विचार आरंभन तो पहला सतगुरु की बख्शिश कीती हुई गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा अमरदास जी का जन्म पिंड बासर के जो अजकल जिला अमृतसर के अंदर है सन 1479 नू बाबा तेज भान जी दे ग्रह विखे होए। बाबा अमरदास जी गुरु नानक साहब जी तो उम्र करके केवल 10 साल छोटे ने। गुरु नानक साहब जी का आगमन सतगुरु का प्रकाश सन 1469 नू राय भोए की तलवंडी ते होया गुरु नानक साहब जी का ते बाबा अमरदास जी का प्रकाश इन्हों का जन्म आगमन शब्द वरत लईए के पिंड बासर के 1479 नू होया। 10 साल बाबा अमरदास सतगुरु गुरु नानक साहब तो छोटे ने। बाबा अमरदास जी दे पिता दा नाम तेज पान है। बाबा अमरदास जी 4 भरा ने ते अमरदास जी सब तो वड्डे ने।
मैं शब्द वरत्या बाबा इस करके वरतनिया अजे ओ गुरगद्दी ते विराजमान नहीं। बाबा अमरदास सब तो वड्डे ने छोटे तीन भरा ने ते इथों तक ये कारोबार अपना जिमीदारा भी पिंड विच करदे सन। उस तो इलावा महिमा प्रकाश विच तां इह भी लिखिया रेशम दे कपड़े दा वपार करदे ने। कहण तो मुराद वपार भी करदे ने, दुकानदारी भी करदे ने ते बाबा अमरदास जी दा पूरा परिवार जिहड़ा जिमीदारा भी करदा है। बाबा अमरदास जी दे संतान इन्हां दे घर दो पुत्र ते दो पुत्रियां पैदा होईयां। वड्डे दा नाम सी बाबा मोहन जी, छोटे पुत्र दा नां है बाबा मोहरी जी, वड्डी पुत्री दा नां है बीबी दानी जी, छोटी बच्ची दा नां है बीबी भानी जी। बीबी दानी जी दा आनंद कारज होया भाई रामा जी दे नाल ते बीबी भानी जी दी शादी, उन्हां दा विआह, उन्हां दा आनंद कारज होया भाई जेठे दे नाल जिहड़े बाद विच गुरु रामदास बने। बाबा अमरदास अपने पिंड विच टिके ने, पिता इन्हां दे भी दया दी धर्म दी मूर्त ने ते इन्हां दे मन विच एक फुरना उठदा है जिहड़ा मन दा टिकाओ वे। जिहड़े असी प्रभु तो कई जन्मां दे विछड़े हां, कोई तरीका है कि अंदर दी भटकना दूर हो जाए ते उस प्यारे प्रभु जी दे चरणां विच लीन हो जाइए। ते इसे गल नूं मुख रख के बाबा अमरदास जी ने एक टीचा मिथे है कि हर साल मैं गंगा ते जाके इशनान करना, दान पुन करना, आए गए दी सेवा करनी है। हो सकता है कि गंगा दा इशनान करन दे नाल मेरे इस मन नूं टिकाओ मिल जाए, मेरा अंदर किते भटकनों बच जाए, मैं उस प्रभु दे चरणा विच लीन हो सकां। ते बाबा अमरदास एक दो साल नहीं, 19 वारी ओ तीर्थ इशनान करन गए ने। कईयां ने शब्द भी वरते, खैर तीर्थ इशनान गंगा इशनान हर वार करन जांदे ने ते महीनियां बद्दी समा लगदा पिंड बासर के तो गंगा इशनान करना ते जाना जाके उत्थे दान पुन भी करना। उत्थे बड़े आराम नाल गंगा दा इशनान करके साधुआं महापुरुषां दे कोल भी बहना है। ते अज 20 वार जदों बाबा अमरदास जी गंगा तो वापस पे आउंदे ने ते रस्ते विच एक पिंड आया मेड़ा, जिसनूं पिंड मिठड़ा भी कहा जांदा है। इस पिंड दा एक बहुत ही स्याणा विद्वान पंडित है जिहड़ा ज्योतिष विद्या विच भी बहुत माहिर है ते इहने अपने घर दे विच

सवाल भी बड़े उपजित ने शस्त्र क्यों पकड़े ते धन गुरु हरगोबिंद साहब ने पहला दो कृपाना पाईया ने एक बड़ी पुरानी लिखत पढ़न का मौका मिलिया उहदे विच गुरु अर्जन साहब नू क्या महाराज तुसी शस्त्र नहीं पाओगे सतगुरु ने एक रमज भरपूर बचन क्या कह लगे पावांगे असा शब्द की प्रीत करके पीर की पीरी खिच लैनी है ते शस्त्र की प्रीत करके मीर की मीरी खिच लैनी बड़े कमाल दे भाव पूर्त बचन सन शब्द की प्रीत नाल पीरी मिलेगी शस्त्र की प्रीत नाल मीरी मिलेगी ते जदों मेरे गुरु अर्जन साहब जी तत्ती तवी ते बैठे ने उस वक्त दे हालात नू एक अदीब ने बड़ा सोहना लिखे ओ कहिंदे ने कंधा हवेली दियां बड़ियां उच्चियां ने अग दियां लाटां पईयां निकलदियां ने ते मेरा गुरु अर्जन पिता तत्ती तवी ते बैठा है ते मुर्तजा खान ओ कहिंदा पिया मैं एक अर्ज होर कर दिया जिन्हां ने सजना ने विद्वाना नू पढ़िया ना कला चंदू गुरु अर्जन साहब की शहादत का हथ नहीं चंदू का इकले का जहांगीर खुद जेड़ा एदे अंदर पूरा एदा योगदान है जहांगीर का शेख अहमद बुखारी का जिन्हों मुर्तजा खां भी कहिंदे ने पिरचिए का भी कुछ हथ है इस तों इलावा कई ऐसे ने जिन्हां ने अपना पूरा योगदान पाया खास करके सरवरीए भी विरुद्ध सन कि सिखी का प्रचार क्यों हुंदा है आप जी दे नॉलेज लई जदों आपां फतेहगढ़ साहब जाने हां ना इहदे थले एक मजार है एक मस्जिद है वह मकबरा है ते आप जी नूं पता होवे जिस बंदे ने गुरु अर्जन साहब नूं शहीद कराण विच पूरी वाह ला दित्ती है उस बंदे दी जिहड़ी कबर है उह सरहिंद फतेहगढ़ साहब दे बिल्कुल ही नाल उस मकबरे दे विच उस मस्जिद दे विच उहदी कबर अजे तां जा के देखो उहदी कबर मौजूद है खैर गुरु अर्जन साहब तत्ती तवी ते बैठे ते पुछिया हुण तुहाडी आवाज किथे वे अग दियां लाटां तुहाडे नाल की पईयां करदियां ने ते मेरे सतगुरु ने जेड़े बचन कहे उस अदीब ने भावे अपनी मन की अडारी विचों कहा कह लगे मुर्तजा खां इस वक्त मेरी जबान नूं तुसी बंद करना चाहते हो पर याद रखना यह जबान बंद होनी नहीं मेरे तो बाद वक्त के जेड़े हालात ने ना उन्हां दा टाकरा ना तेरे तो होना है ना जहांगीर तो होना है ए ठीक है अज अग दियां लातां विच मेरे शरीर नूं गुम करना चाहते हो पर मेरे तो बाद जदों हरगोबिंद ने कृपान पकड़ी तुहाडे किसे दी ताकत नहीं ओहदे नाल तुसीं टक्कर लै सको उस अदीब ने बचन लिखे ओ कहिंदा हजूर ने क्या मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा फसीले आतशो आहन बहुत बुलंद सही मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा मेरे ख्यालों की परवाज रोकने वालों मेरे हरगोबिंद की तलवार कौन रोकेगा सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब ने दो कृपाना पाईया ते सवाल उठा कृपाना क्यों ते एदा उत्तर भाई गुरदास होरां ने दिता कह लगे कुदरत दा एक नेम है जदों जिमीदार फसल बीजद जिन्नी ओ कीमती फसल बीजद ते कंडियां दी वार त्यार चपेरे करदा है जे पुछिए तेनू की लोड़ है कंडियां दे वार करन दी ते ओ इको गल कहिंदा है जितनी फसल कीमती है पशु लंघ के इस फसल नू तबाह करनगे पशु बिरती तो बचाण लई वार अत जरूरी है ते गुरु हरगोबिंद साहब ने शस्त्र इस करके पाए ने कि गुरु नानक दी फुलवाड़ी नू पशु बिरती वाले तबाह ना करना चाहन इस करके सतगुरु ने एक वार ला दित्ती भाई गुरदास ने वचन किया कह लगे खेती वार जो टिंगरी किकर आस बास जो बागे ते उस वक्त केंद ने सप लपेटे चनना बूआ जंदा कुत्ता जागे चंदन नू भी सप चंबड़े ने ओदी राखी दे लई असी बूए अगे भी जंदरा मारने कुत्ता रखने इसे तरह कह लगे इस फुलवाड़ी नू बचाण दे लई शस्त्रां दी जरूरत है खैर साध संगत आपां अगे तुरीए ए लोग जालम जुल्म करते रहे जदों साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का समा आया ते उस वक्त मेरे दाता जी आनंदपुर की धरती ते ने इन्ना कु जुल्म वध गया कि जालम की तलवार ने अनेकां दे सिर ला दिते जन्यू ला दिते टिक्के मटेन की कोशिश की ते उस वक्त गुरु तेग बहादुर जी दे चरणा विच इन्हां ने फरियाद की महाराज तू

0: सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता लै रहे सी। आओ जितनी कु सोज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं भी चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण किया है, बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहमिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी तुक सी। पहलियां पंक्तियां सन, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाइय, भाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अम्यो चुआइय। ते इस शब्द दे अखीर दी तुक सी कि गुरु नानक साहब एक जोगी नूं संबोधन कर रहे ने। कहो नानक सुन भर थर जोगी, इहदा मतलब ए शब्द किसे जोगी नूं संबोधन करके उचारण किया। पर चेते रखना ए शब्द केवल उस समय तक उस जोगी दे जीवन तक सीमित नहीं सी। ए शब्द अज भी गुरु के सिखां नूं एक चेतावनी दिंदा है ते नाम रस नाल जुड़न दी प्रेरणा दे रहा है। शब्द असां सुणे, बाबा नानक जी नूं जोगी मिले है। इन्हें गल कीती है लिव दी, गल कीती है अनहद शब्द दी। ते जोगियां दे मत मुताबक उन्होंने प्याला भर के नशे का पेश किया है, शराब का पेश किया है। ते बाबा जी पुछदे ने ए की, कह लगे एक वारी पी लिए ते परत के दिन चढ़े तक एदा नशा उतरदा नहीं। इन्नी टेक के समाधि लाई दी कि शरीर नूं थकावट भी महसूस नहीं हुंदी। ते बाबा जी कहन लगे भलियो ए प्यार किवें कीता जे, ध्यान देना। कहन लगे भांडे विच पानी पाया सी, पानी पा के विच गुड़ पाया, गुड़ दे विच किक्कर दे छत पाए ने, अमोवे दे फुल पाए ने। पहला एक कच्ची एक कच्चा रस तैयार होया, परत के अग दी भट्ठी ते भांडे नूं रखिया ते इहदे चों गिरदे आपां भांडे उपर होर बथल फिट कीता, उहदे विच नाली लाई है ते भांडे उपर जिहड़ा बथल फिट कीता होर भांडा फिट कीता ते उहदे चार चफेरे असीं मिट्टी दा पोचा फेरिया ते थल्लों अग बाली ते जिहड़ा इहदा अरक निकलिया इहनूं असीं रस कहिंदे आ। इक वारी पी लईए ते रात भर इहदा नशा उतरदा नहीं। इशारा सी शराब वाल। बाबा जी कहन लगे शराब दा नशा नहीं, ओ रस की होए जेड़ा शाम नू पीता होवे ते सवेरे उतर जाए। ते कहन लगे मैं उस नाम रस दे प्याले नू पी चुका हां ते एहो जिहा आनंद अंदर बन गया है कि चेते रखो ओदा नशा, ओदा सरूर, ओदा रस कदी भी उतरदा नहीं। ते जोगियां ने पुछया ए रस किवें तैयार हुंदा है। ते बाबा जी कहन लगे जोगियों गुड़ कर ज्ञान परमेश्वर दे बख्शे हुए ज्ञान नू गुण बनाया ध्यान कर पावै ओदे नाम विच ध्यान जोड़ना मैं इनू अमवे दे फुल बनाया कर करनी कस पाईऐ ते उच्चे आचरण नू किकर दे सक बना दिता है पाठी भवन आ शरीर नू पठी बना दिता है इस मोह दी मोह नू मैं साड़न तुरिया वा पाठी भवन तुसी मिट्टी का पोचा देंदे हो प्रेम का पोचा ते एदे विचो शराब नहीं एक रस अमेओ च वड़ गया है एदे विचो अमृत दीआं बूंदा डिगदीआं एक रस अमेओ च आई है कह लगे फिर बाबा हे जोगी मन मत वारो मन मस्त हो गया है नाम रस पीवे सहज रंग रच रहा एमस बनी प्रेम निव लागी शब्द अनाहत गया एमस का अर्थ हुंदा दिन ते रात एवो जिहा सुरूर ओ विचार है कि मेरे अपने अंदर ही ओ शब्द सुनाई दे रहे ओ शब्द आप जी ने सरवण किया ते जे आपां कह दईए भी ए कले जोगी वास्ते सी ते ध्यान रखियो गुरु के सिखो बाबा नानक जी ने इस शब्द विच कले जोगी नू नहीं हर प्राणी मातर नू कह जिस नशे पिछे तू जीवन बर्बाद कर रहे इस नशे ने ना लोक सवार नहीं ना परलोक सवार नहीं ते कई बारी कोई सज्जन कहिंदे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब विच शराब दे मुतल्लक कुछ बचन कीते ने हां बाबा अमरदास जी इक बचन करदे ने कहिंदे ने मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए जित पीता मत दूर होए बरल पवै विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जिदे तीन नाल अपने पराए की पछाण नहीं ओहो जे बंदे नू तां रब की दरगाह विचों भी धक्के पैंदे हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी भगत रविदास जी का एक शब्द हुंदा नादर जना मेरी जात बख्यात चमारन उस शब्द विच इक तोके कहिंदे दुनिया ने सब तो पवित्र गंगा नदी नू मन्निया हिंदुस्तान दे लोगां नू पर भगत रविदास कहन लगे जेकर गंगा दियां लहरां दे पानी दी भी शराब कोई कढ लै ते रब दी बंदगी करन वाला कदी ओहदे वल झाकदा नहीं उहनां दा बचन सुरसरी सललकृत बारनी रे के जेकर सुरसरी दा अर्थ है तू गंगा दियां लहरां दी शराब बना लै सलल दा अर्थ है लहर सुरसरी सललकृत बारनी रे पर नाल कह दिता संत जन करत नहीं पानंग सतगुरु गुरु साहिब जी ने ओह रस दिता जेड़ा रस नाम दा कदी उतरना नहीं खैर गुरु नानक साहिब महाराज जी दा पवित्र इतिहास आपां कल विचार कीती सी गुरु नानक बाबा जी ने सज्जन ठग तो सज्जन भाई बना दिता है अगे लोकां नू ठगदा सी अज एहो जिहा सज्जन बना दिता नाम दा वपारी बन गया गुरु नानक साहिब महाराज सज्जन तो बाद हर द्वार दी धरती ते पहुंचे ने इत्थे मेरे दाता जी ने कुछ एहो जिहा कौतक वरताए जेड़ी कई मुद्दतां तो उन्हां दी मनौत सी एक परंपरा बनी हुंदी सी ते पांडे ने मर्यादा बनाई सी ते गुरु नानक दे उस दलील ते नाम दी बरकत सामने कोई खलो ना सकिया हर द्वार पहुंचे ने अजे सूरज दी टिक्की निकल रही है ते लोग गंगा विच इशनान तय करदे ने ओ लोग तन नू तां धो रहे ने पर मन उन्हां दा दसी पासी धामदा पिया तन धुपदा पिया पर मन धामदा है मन धुपदा नहीं मैं बेनती कीती धामदा दर ते दौड़दा पिया पिंडे ते पानी पै रहा है पर मन ते उस पानी दा असर नहीं ते कुछ कु ने पानी दियां बुक्कां भरियां ने ते सूरज वल पानी पै सकदे ने ते बाबा नानक जी कहिंदे ने मरदानिया तू खलो किनारे ते आ देख पानी पै सिंजदे ने चढ़दे नू आपां वी अपने घर दा कोई सोचिए बाबा नानक जी पानी विच प्रवेश कीता ते लहिंदे नू पानी झटना शुरू कर दिता पानी सिंजन लगे ते जदों बाबा नानक जी इकले लहिंदे नू पानी सिंजदे पए ने हुण इन्नी भीड़ सी कहन लगे देखो आ बंदा कौन है ए हिंदू है ते जे हिंदू वे ते चढ़दे नूं पानी छड़ के लेंदे नूं पानी दे रहा है। ते पंडे कोल आए कह लगे भलिया तू पहली बारी इत्थे आए? कह लगे हां। फिर किन तेनू पता नहीं पानी चढ़दे नूं दईदा लेंदे नूं नहीं? सतगुरु बाबा जी कहिंदे ने चढ़दे नूं क्यों? कहन लगे कुछ तां सूरज नूं पानी देंदे ने, कुछ अपने मर चुके पितरां नूं पानी पै देंदे ने। बाबा जी कहन लगे पितर किन्नी कु दूर ने? उन्हां ने करोड़ां कोह दी गिनती कीती ते बाबा नानक जी फिर पानी झटन लग पै। ते उन्हां कहा हे बाबा असी तेरे सवाल दा उत्तर दे दिता, तुसी पुछिया असी पानी किन्नू देने आ? असी सूरज ते पितरां नूं पानी दे रहे हां ते तुसी पानी किधर दे रहे हो? बाबा नानक जी कहन लगे मेरी धरती है लेंदे नूं, जमीन विच फसल बीजीए। ते कई बारी साडे वीर कहिंदे ने बाबा जी ने कहा मेरी करतारपुर जेड़ी खेती सुकदी पई है। नहीं प्यारे अजे करतारपुर शहर बद्दा भी नहीं सी, करतारपुर ते सब तो अखीर विच बज्जा। कहन लगे लेंदे नूं मेरी धरती विच बीज पिया, फसल सुक रही है, मैं चाहना वा पानी चढ़ चढ़ के उस फसल नूं भरपूर कर दिया। सारे हस के कहन लगे देखो इन्नी अकल नहीं, आ गंगा विचों पानी निकल के तेरे पैरां विच फिर परत के रुड़ के वापस आंदा है, इन्ने को दूर पंजाब की धरती ते पानी पहुंचेगा? जा तेरी उस धरती ते जिथे तू फसल बीजी पानी अपड़ जाएगा? बाबा जी कहन लगे पंडा जी मैं ता अज पानी सिंजन आया, आ तुहानू किन्ना कु चिर हो गया पानी चढ़दे नूं सिंजदे आ? कह लगे ते ता हर साल ही लोकी सिंजदे ने, जदों कोई यात्री आए ते पानी सिंजदा है। साहब कहन लगे पंडित जी जे तुहाडा सिंजिया होया पानी करोड़ां को दूर पितरां तक ते सूरी तक पहुंच सकदा है, उह साडी धरती ते सैकड़े कुआं तेरे कि साडा पानी उस धरती ते नहीं पहुंचेगा? जे तेरा सैकड़े कुआं दूर हजार करोड़ां कुआं दूर ते साडा सैकड़े कुआं दूर नहीं जांदा? लोग हैरान हो गए, कहन लगे अज तक किसे ने सोची नहीं, वाकई जेकर पानी पितरां तक पहुंच जांदा है ते इह पानी इस धरती ते नहीं पहुंच सकदा? ते सारे कोल आ गए, कहन लगे बाबा गल तां तेरी बिल्कुल दुरुस्त है, पानी पितरां तक पहुंचदा नहीं। ते चेते रखियो पितरां दा असी अर्थ करने आ जिहड़े मर चुके प्राणी ने, जिहड़े बजुर्ग चढ़ाई कर चुके ने। पर अज बाबा जी ने एक किवाड़ खोलिया उन्हां लोगां दा जिहड़े जिउंदे जी तां बापू दे मुंह विच कुट पानी दा नहीं पाया, जिन्हां ने जिउंदे जी मां बाप नूं रोटी नहीं कदी अदब नाल दित्ती ते मरन तो बाद गंगा विच खलो के चढ़दे नूं पानी सट के कहिंदे ने पितरां नूं पानी देने आ। गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा ने उन्हां लोकां नूं झंझोड़िया। पहली गल इत्थे दो गल्लां ने, एक तीर्थ ते नहाउण वाले ते दूजे पितरां नूं पूजण वाले। आपां भाई साहिब भाई गुरदास जी उन्हां तो पुछिए भी जेड़े लोग जिउंदे जी मां बाप दा अदब नहीं करदे ते मरण तो बाद पितरां नूं पानी देंदे ने, भाई गुरदास जी तुहाडे कोल गुरु नानक जी दे घर दी विचारधारा, दसो उन्हां बारे तुहाडा की ख्याल? भाई गुरदास जी दी वार नंबर 37 ते पौड़ी नंबर 12 ते 13 ध्यान रखना। भाई गुरदास जी कहिंदे ने ऐ मनुख ए माया किन्नी प्रभावशाली है, जिदन तेरा जन्म होया रब दा भाणा उदन वापरिया। वैसे असी भाणा अखर जेड़ा है ना इनू दुखांत नाल जोड़ दिता है, ध्यान देना। असी कई बारी भाणे अखर नू दुखांत नाल जोड़ने आ, कोई काम बिगड़ जाए, कोई मर जाए, किसे नू सट लग जाए, असी कहने भाणा वापरिया है। मौत होवे ते कहने भाणा वापरिया है, ते जदो जन्म होवे ते कोई नहीं जे कहिंदा इन्हां दे घर रब दा भाणा वापरिया है। असल भी जिदन बच्चा जमदा उदन भी भाणा ही वापरदा। आ एक शब्द हुंदा आनंद साहिब विच, जां किस भाणा तां जमिया परिवार भला पाया। कहिंदे ने जां किस भाणा तां जमिया, जिदन तेनू रब जी पाया उदन जीव दा जन्म होया। ध्यान रखना कुछ अखर ऐसे ने, जिवें हुण एक अखर है जलूस, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੂਸ ਅੱਖਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੋ ਤੋਂ ਜਲੂਸ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜਲੂਸ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬਕਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਣਾ ਅੱਖਰ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਕਣਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸ਼ੋਂ ਦੇਵਾ ਜੋਰ ਚਰਨ ਗਹੂੰ, ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬਕੋ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ, ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਾਂ। ਚਰਨ ਗਹੂੰ ਬਕੂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ ਅਕੋਰ ਦਰ ਤੇ ਭੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੋ ਉਦਨ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਵਿਚੋਂ ਗਰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਤਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਲਿਆ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੈਂ ਉਦਨ ਸਾਈਂ ਵਿਛਰਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਣ ਕਾਮਣੇ ਆਰੀਏ, ਕੀਤੋ ਕਾਮਣ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਨੀ ਟੂਣੇ ਹਾਰੀਏ ਇਸਤਰੀਏ। ਤੂੰ ਕਾਮਣ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਟੂਣਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਮੇ ਸਾਈ ਵਿਛਰਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਗਾਇਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ
1: ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰ ਜੋ ਹਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਮੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੰਕਟ ਸਰਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਪਾਠੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬੜੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਮ ਦੇ ਵੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸਾਢੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆਮ ਦੀ ਕਥਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਜੀ ਕੀਤਾ।

मन तेनू दे दिया, मैं मार्ग देखो बताए जियो, मैनू दस ता सही मेरे गुरु दे घर नू रस्ता की हो जांदा, किवें तुरना मैं गुरु दे मार्ग ते। ते मैं बेनती करा ये शब्द केवल गुरु जी दे अंदर दे आम कवियां वाले ख्याल नहीं, ये तुर आत्मा दी आवाज है। ते जे सिखा अज तू इन्हां नू मन लवे किते तेरे मन विच ना तड़ पैदा होवे किते कि मैं अपने सतगुरु गुरु कलगीधर तेरे मार्ग ते किवें चलां। उत्थे तां तरले करके पुछदे पए ने सानू मार्ग दसो, ते इत्थे गुरु के सिख रोज पुकार पुकार के कहिंदे ने लुकाई आ मार्ग गुरु दर नू जांदा, इस मार्ग ते चलना शुरू कर दीजिए। साहब कहन लगे ए मन तैं कू देवसा, मैं मार्ग देहो बताए जियो। हुण अगला वचन कीता, कहन लगे हकीकत ए कि मैं बड़िया थावां ते भटकिया वां, खौ आया दूरों चल कै, मैं तक्की तो शरणाए जियो, मैं आशा रखी चित में, मेरा सब दुख गवाए जियो। तुसी कृपा करो, मैं बड़ी दूर तो चल के आया, हुण देखो गुरसिख दा उत्तर की। जेरे गुरसिख नू पुछिया आप जुड़िया सी, उन्हें उत्तर विच इको ही गल कही, कहन लगे भरावा जे इस मार्ग ते चलना ही, जे ए मार्ग तू पुछना है, सब तो पहली गल अपने मन दियां टुचरां नू त्याग दे, अपनी मन जी खुजत नू छड दे। कहन लगे इत मार्ग चले पाईड़े, ओ मेरे भरा जे इस मार्ग ते चलना चाहना तू पुछना है कि मैं मार्ग देओ बताए जियो। इत मार्ग चले पाईड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो, ते अगली तो के त्यागे मन की मतड़ी, वे सारे दूजा पाओ जियो। मन दी मत नू छड़ दे, अपनी खौमे दी पंड नू सट दे, ते जो गुरु तेनू कहिंदे ने ओनू सत बचन करके मन ताए मार्ग लभणे। इत मार्ग चले पाईड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो, त्यागे मन की मतड़ी, वे सारे दूजा पाओ जियो। ते जदो मर्यादा मन लेगा ना, इउं पावे हर दरसावड़ा, न लगे तती वाह जियो। इस मार्ग ते चलिया खरीदार दरसावड़ा ओदे दर्शन हुंदे ने, तेनू तती वाह नहीं लगेगी। तीसरा प्रमाण अर्ज करा के हुक्म मन के मार्ग ते चलिया जाने। हजूर ने एक बचन कहे, असि पढ़ने बड़ी बारी, हजूर कहिंदे ने असल विच गुरु का सिख होवे, गुरु का रिश्तेदार ओ है, गुरु का पुत्र ओ है, गुरु का मित्र ओ है। महाराज कौन? कहन लगे जेड़े गुरु दे पाने नू सतगुरु दे हुक्म नू सत करके मानदे ने, ते जेड़े गुरु दे हुक्म नू एक पासे छड के अपनी मन मत करदे ने, गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने विछड़ के हमेशा ओ चोटे खांदे। उथे गल हुक्म दी कीती, कहन लगे सो सिख सखा बंद पहे पाही। हुण देखो किन्ने प्यारे शब्द वरते ने, किन्ने साडा सिख भी होवे, रिश्तेदार भी ओ है, भरा भी ओ है, मित्र भी ओ मनुख है। कौन? जेड़ा सतगुरु दे भाणे विच आउंदा है, जेड़ा गुरु दे हुक्म नू मंनदा है। सो सिख सखा बंद पहे पाही, जे गुर कै भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले पाई, विछड़ चोटा खावे। जेड़ा अपने भाणे विच मन मतड़ी करेगा, अपनी खौमे विच चलेगा, ओ विछड़ेगा, ते विछड़े होए हमेशा जेड़े ने ओ चोटा खांदे ने। मैं बेनती आरंभ कर लगा कि पहली गल बिना किसे टुचर तो, भावे असी कह देंगे अर्थ करांगे ककारां दे अर्थ की ने, चार बजर क्रैतां तो क्यों बचना है। मैं कहना सिख नू हुक्म शब्द कदी नहीं भुलना चाहिदा, जो गुरु हुक्म करदा है ना ओनू सत बचन करके मनन विच ही जिंदगी विच पड़ा हुंदा है। साहिब कृपालू जी ने एक प्रमाण होर दे के अगे चलना, सतगुरु कहिंदे ने कीर्तन हुंदे ने, कथा हुंदी है, आपां बाणी पढ़ने आ, ते अखीर ते गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणा विच ना अरदास करने आ। भावें घर पढ़िए, भावें गुरु घर बैठ के पढ़िए, गुरु के वजीर जां अरदासिया सिख कहिंदा दाता जी कृपा करियो के पढ़ी सुनी विचारी सेवा कीती हुई, बाणी पढ़ी सुनी ते कीती हुई सेवा अपने दरगाह प्रवान करियो। कई कहिंदे ने सचखंड प्रवान करियो, कई गुरमुख कहिंदे ने अपने घर प्रवान करियो। ते मैं कई वारी बेनती करना भी आपां कह के चले जाने आ के दाता जी प्रवान करियो, पर सानू किवें पता लगे जी भी

के सिखो क्यों जुगो जुग अटल गए। ये फानी संसार वाले बापू का नाम नहीं, मां का नाम नहीं, पुत्रा का नाम नहीं, इथे भैन का नाम नहीं, पर एक गुरु नानक ते भरोसा करो कि जिन्हों लोग नीवा शूद्र कहते सन, भाई लालो का नाम गुरु ग्रंथ साहब सत वरी आया, एक वरी नहीं सत वरी गुरु ग्रंथ साहब आया। जब तुम शब्द पढ़ोगे कि जैसी मैं आवा खत्म की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे लालो, सत वरी ना आया ते मर्दाना जी का दो वरी ना आया। मैं बेनती करा कि जिन्हां नूं लोक मंदिर विच थां नहीं सन दिंदे, गुरु ग्रंथ साहिब विच बाणी दर्ज करके मेरे गुरु अर्जुन देव ने खरमंदर विच थां दे दित्ती कि यह गुरु नानक साहिब दी कृपालता नहीं। जेड़ी अज बचन कह सन इन गरीब सिंगन को देओ पातशाही, ये बचन कभी बाबे नानक दे पढ़ो कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हुआत नीच, नानक तिन कै संघ साथ, वडिया स्यों क्या रीत, जिथे नीच संभालियां तिथे नजर तेरी बख्शीश। मेरे गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह ने आप सब नू पता है पंजा ने सिर भेट किते ने, ये भी महापुरुष दर्शा गए कि गुरु समर्थ है। हुण देखो फिर सर्ब लोहे का बाटा लिया है, पवित्र जल पाया है, माता जीतो जी ने पतासे पाए ने, ना के माता साहब कौर जी, तवारीख दे पन्ने पढ़ियो असीं कह दिंदे माता साहब कौर जी अमृत संचार तो बाद आए ने। हां ये भी मैं अर्ज कर दिया कि उन्होंने कुवारा डोला भी शब्द वरते हैं, ते जिस दिन अंदर फुरना पैदा होया सी कि मेरे घर भी संतान होवे, ते गुरु कलगीधर जी ने कहा सी भरे दीवान भी आयो ते तुहाडी अरदास कीती जाएगी। गुरमुख इसे तरह दीवान सजिया, पांच प्यारे गुरु की ताबिया भी सन, अमृतधारी सिंह जेड़े ने हजूर दी हजूरी विच बैठे सन, ते माता साहब कौर नू भरे दीवान विच कहा सी कि तेनू पुत्रां दी दात चाहीदी है, संसारी पुत्र कुछ कु समय दा रिश्ता बन गए, पुत्र दी मौत तो बाद पोतरा पैदा हुंदा, पोतरा थां लैंदा, पुत्र केवल एक पीढ़ी तक रहिंदा है, मैं तेनू ओ पुत्र तेरी झोली विच पा के जाऊंगा, जिन्नी देर तक सिख जगत रहेगा तेरे पुत्र दी कदी मौत नहीं होवेगी, तेरा पुत्र तेरी गोद विच खेलदी रहेगा। पुछिया सतगुरु केड़ा पुत्र, कहन लगे प्यारे भाई दया सिंह तुसी मेनू सिर दिता, मैं अपनी गोद विच छीने दा अमृत तुहानू दिता, ते अज तो बाद तुसी माता साहिब कौर दी गोद विच बह जाना। मैं कहना मां जेडे प्यारे गुरु के सन तेनू ओना ने मां कहा ते तेनू इना उच्चा रुतबा दिता मां के ओना नू तेनू पुत्र तुहानू पुत्र कहण दा सत्कार देण दा रब वालों गुरु वालों कृपा हुई। जेड़ी बेनती कर लगा खंडा बाटा ले है, सर्ब लोह दा बाटा, दो तारा खंडा, पतासे शब्द भी वरते ने कि निर्मल जल है, वैसे दुध क्यों नहीं वरतिया, ध्यान दिया जे हजूर ने जल जो है ये निम्रता का प्रतीक है, जल जो है ये सुचमता का निर्मलताई का प्रतीक ते निम्रता का प्रतीक है, पसासे छोटे वड्डे ने जो घुल जान ता केवल मिठास रह जाती है, छोटे वड्डे दे आकार खत्म हो जाता है। कृपाण की थां ते गुरु साहब ने खंडे की वरतों क्यों की थी है, एदा भाव ए वे गुरमुख विद्वान ने कोई नहीं, डॉक्टर तारण सिंह उन्होंने कोई साखी खंडन नहीं की थी। ओ कहिंदे ने गुरु घर विच केवल भगती नहीं, इत्थे भगती ते शक्ति, संत ते सिपाही, मीरी ते पीरी, हरमंदर ते अकाल तख्त, रबाब ते नगारा, इत्थे सजणो कि जदों खंडे दा अमृत तैयार कीता है, दो धारा खंडा जिहड़ा ए मीरी ते पीरी दा प्रतीक सी, दोनों इकट्ठे दिते ने अमृत दी दात जदों देण लगे, पहली बाणी मेरे सतगुरु ने जप पढ़ी। मैं इस करके बेनती अज करनी चाहना कि अमृत बन किवें गया, ते पिछले दिनां तों शब्द वरत रहे हां कि सिखा अमृत दीआं बाणीआं ही नितनेम दीआं बाणीआं ने, जिहड़ा सिख नितनेम करदा रहे उहदे अंदरों कदी रहत दी घाट नहीं आउंदी, कदी उहदे अंदर तोटा नहीं आउंदा, क्योंकि जदों सवेरे गुटका चुक जां चौंकड़ा मार पंज बाणीआं दा नितनेम करदा है, उदों अखां सेजल हो के कहिंदीआं ने गुरु गोबिंद सिंह जिद्दन तेरा पुत्र बनिया सा ना, ये पांच बाणिया विच गवाह ने, इन्हां नू पढ़न तो बाद तू मेरा बापू बन गयो ते मैं तेरा पुत्र बन गया सा। रोज़ो बाणी दिती, हुण तको जपजी साहिब दी बाणी आरंभ हुई।

जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखश फारे कर आज। फुन द्रोपती लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज। सुदामा अपदा ते राखिया, गणका पड़त पूरे ते काज। श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए,

अपने पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी दे नाल कीरतपुर साहब रहे, काफी लंबा समा रहे। जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ज्योति जो समाणा सी, बहुत भारी संगत दा इकट्ठ होया, संगत सदी गई, सतगुरु जी ने उत्थे कौतक वरताया, मैं पिछले दिन भी जिक्र किया सी। सतगुरु चाहते सन के गुरता गद्दी की जिहड़ी पोजिशन है ना, गुरता गद्दी का जिहड़ा मसला है, यह साडे सामने हल होवे, कोई बाद पिछे दावा ना करे। लखां की तादाद में संगत बैठी, गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने पुत्र सूरजमल नूं कहा, बेटे खड़े हो, मंगो की चाहिए। उस वेले गुरु साहब जी के तीन पुत्र मौजूद सी, बाबा गुरदत्ता जी शरीर त्याग चुके सन, बाबा अटल राय शरीर त्याग चुके सन, सूरजमल अनी राय ते गुरु तेग बहादुर साहब बैठे सन। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने हुक्म किया, बेटा सूरजमल खड़े होवो, मंगो की चाहिदा है, भी कल नूं सूरजमल गुरु होण दा दावा ना करे, अज साडे सामने स्पष्ट होवे। ते बाबा सूरजमल जी ने झोली अड के एक गल कही, गरीब नवाज मैनू सिखी दे दिओ, मैं सिख बन जावां, बस इस तों वध मैनू कुछ नहीं चाहिदा। ते सतगुरु जी ने फिर अपने दूसरे पुत्र अनी राय नूं बुलाया, बेटा तुसी मंगो की चाहिदा है। अनी राय छोटे हुंदिया तो उन्हां दी बिरती बस बैराग विच रहिंदी सी, रब नाल जुड़े रहिंदे सी, किसे नाल बोलदे चालदे घट सी, बड़े दुनिया तो उपराम रहिंदे सन। उन्होंने एक बेनती की, पिता जी जे टुटे हो ते मेरी सुरत जिवें रब नाल जुड़ी है एदां ही जुड़ी रहे, बस मैनूं होर कुछ नहीं चाहीदा। ते सतगुरु ने उस वेले फिर गुरु तेग बहादुर साहब नूं कहा, बेटा तुसीं खड़े हो। गुरु तेग बहादुर साहब खड़े होए, उन्हां नूं ए नहीं कहा मंगो की चाहीदा, कहण लगे झोली करो। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने झोली की, तीन चीजां उन्हां दी झोली विच पाईआं, एक पोथी, एक कटार जिसनूं सिख इतिहास कृपाण कहिंदा, एक रुमाल। ये तीन चीजां दे के कहा, जदों असीं शरीर त्याग जावांगे, साडे बाद तुसीं अपने परिवार नूं लै के बकाले चले जाणा। ये सतगुरु पातशाह ने हुक्म किया, ते पिता जी का हुक्म सिर झुका के गुरु तेग बहादुर साहब ने प्रवान कर लिया। उदों अजे गुरु नहीं सी बने, मैं उन्होंने सत्कार विच शब्द वरत रहा, गुरु तेग बहादुर साहब उदों अजे गुरु नहीं सी बने, पर उन्होंने सत्कार वजों शब्द वरत रहा मैं। गुरु हर राय साहब नूं गुरता गद्दी दे के गुरु हरगोबिंद साहब जी ने तीन परिक्रमा कीतियां, मत्था टेकिया ते कहा, गुरु नानक पातशाह दे सतवें स्वरूप गुरु हर राय साहब होणगे। हुण कोई डाउट ना रहा, धीरमल ने गुरु होण दे बड़े दावे किते, गद्दियां ला के बैठा, कीरतपुर साहब भी आ गया, उन्हें बहुत कुछ किया, उसनूं रातों रात कुट फंड के उत्थों सिखां ने कढ दिता, ऐसा इतिहास है, बड़ा लंबा है। कीरतपुर अपना धीरमल दावे करता सी गुरु होने दे। गुरु हर राय साहब जी तों बाद गुरता गद्दी गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं दित्ती गई। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने तीन साल यह सेवा निभाई, ते दिल्ली विच उन्होंने जदों शरीर त्यागना सी, संगत नूं ऐलान किया भी असीं पंज भूतक शरीर त्याग रहे हां, ते संगत ने बेनती की, गरीब नवाज पातशाह जी तुसी संगत नूं किते लड़ ला के जा रहे हो, भी गुरु साहब ते अपनी मौजूदगी विच संगत नूं लड़ ला के जांदे सी, तुसी किन्नूं पां फड़ा के जा रहे हो। ते गुरु हरकृष्ण साहब ने एक बचन कहा सी, बाबा बसे ग्राम बकाले, बाबा बसे ग्राम बकाले, बन गुर संगत सबे संभाले। पांच सिख सी, भाई गढ़िया, भाई झंडा, भाई गुरदत्ता ते कुछ होर नां ने जिन्हां दी ये जिम्मेवारी दित्ती गई सी, भाई द्वारा, भी तुसी जाके ना ये गुरता गद्दी दी रस्म जिहड़ी है गुरु तेग बहादुर साहब नूं करनी। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ना करते सी, कहा सी ने मैं इस जिम्मेवारी दे लायक नहीं। इतिहास ये चीज लिखदा है कि सतगुरु जी

मित्र नूं भी ना आख बई क्यों कोई भरोसा नहीं। वह कहिंदा मित्रता शिखरता ते पहुंच के दुश्मनी बन जाती है ते कई दफा दुश्मनी शिखरता ते पहुंच के मित्रता बन जाती है। इंज आखे और अक्सर नवे सदी ऐसा होंदा है कि जिहदे नाल बहुत गूढ़ा संबंध है बहुत गहरी चोट वही पहुंचा सकता और ओपरा नहीं पहुंचा सकता। ओपरे नूं की पता है दूजे तीजे नूं की पता है। अपना जितनी गहरी चोट पहुंचा सकता है दूजा तीजा नहीं पहुंचा सकता। राम तो भी लंका नहीं ढाणी जानी सी जे अपना ना आता उठे। इतनी मैरज करते हैं जो विभीषण ना आता। यह हकीकत है बहुत वड्डी सच्चाई है क्योंकि अपने नूं सब कुछ पता है। अपना जब दुश्मन होगा तो वह इतनी गहरी चोट पहुंचाएगा ओपरा नहीं पहुंचा सकता। ओपरे नूं तो कुछ पता ही नहीं है। इस वास्ते यह हकीकत है बहुत वड्डी जो है सच्चाई है कि दुश्मन की तस्वीर अखां विच क्यों समा जाती है। लाजमी किस वक्त मित्र रहा होगा। मित्रता दुश्मनी च बन गई तो दो ही तो याद आउंदे ने या मित्र याद आउंदा या दुश्मन दूजा तीजा नहीं याद आउंदा। दुश्मन नाल भी संबंध है। तुसीं बगौर मुताला करके जो है बैठना कदी सोचना कौन याद आउंदे ने या मित्र याद आवणगे या दुश्मन याद आवणगे। दुश्मन नाल भी संबंध है आंतरिक संबंध है दिल का संबंध है। दिल मित्र नूं याद करता है दिल दुश्मन नूं भी याद करता है। इस वास्ते दुश्मन नाल भी संबंध बनिया रहिंदा है मित्र नाल भी संबंध जो है बनिया रहिंदा है ते संबंध कारण करके उहदा अक्स अखां दे चाहुंदा है। शायर लोग ते कहिंदे रहे सन पर हुण इसकी तस्दीक कर दी है विज्ञान ने कि अखां विच भी कोई समा सकता है कोई जो है वस सकता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं परमात्मा हुण मेरी अखां विच वसे होया है। भगत कबीर ने भी ऐसा कहा है दोए दोए लोचन पेखा हौ हर बिन और न देखा। ते कबीर नूं पुछिए इहदा सबूत की है तेरी अखां विच है इहदा की सबूत है। कबीर कह रहे सबूत मेरी अख तो बिना होर कोई सबूत नहीं मेरी अख ही सबूत है। नैन रहे रंग लाई अब बेगल कहन न जाई। कहने अखां विच जद पुत्र होवे तां ममता टपकदी है। अखां विच जद पराया रूप होवे तो वासना टपकदी अख ही दस दिंदी। कबीर कहते मेरी अख ही सबूत है और कोई सबूत नहीं। अखां विच जद पराया धन होवे तो लोभ अखां विच टपकदा है दस दिंदा है लाजमी दस दिंदा है। और हकीकत है जद दिल दिमाग विच दुश्मन वसे आवे तो खिमा करनी अखां ही दस दिंदियां ने दृष्टि दस दिंदी है। बंदा कह देना इंज घूर घूर के क्यों देखता है। हुण घूर घूर के मां भी बच्चे नूं वेखदी है घूर घूर के मित्र भी मित्र नूं वेखदा है लेकिन खिमा करनी घूर घूर के दुश्मन भी दुश्मन नूं वेखदा है। वह घूर ना कुछ होर है वह जिहड़ा घूर के वेखना है पराए धन नूं पराए रूप नूं। उहदे वास्ते संस्कृत दे इक लफ्ज़ है अखां नूं आख्या लोचन। ते जिहड़ा लोचन एक थां ते गाल के ही रख देवे उहदे वास्ते लफ्ज़ है लुच्चा गाल। लुच्चा दे अर्थ बदमाश नहीं ने लुच्चे दे अर्थ ने इन्हें लोचन एक थां ते टिकाई दिते ने गाल के रख दिते ने लुच्चा। धन वेख्या किधरे पराया अखां गड़ के ही रह गई अपनिया नजरां नूं गाल के इसने रख दिता लुच्चा। रूप वेख्या इसने कोई पराया ओ परा ते अखां गड़ के ही रह गई लोचन टिका के रख दिते इसने ते हुण अपने लोचन किसे होर पासे नहीं करदा लुच्चा। जिहदे लोचन जो है रुक गए ने एक थां ते। मैं फिर अर्ज करा लुच्चा का मतलब अखरी अर्थ बदमाश नहीं है। लुच्चा का मतलब है जिन्हें लोचन जिन्हें अपनी